0: talking to me?
1: इतना रियल बात लेकर डराइल बड़न बातचीत से बिना होके माइक खींची चिल्लम ऊपर चांद लिखे ड्रामा देनी साउंड अंडरग्राउंड रिच लागे लागल पांच तीन से वर्स में बाउपेन एंड अंडर कॉन्फिडेंट लाइकन के डिस लागे लागल का सीन में बाबन के वर्स मार मीट लागे लागल बनारस तक को लैब चमर चीट बाजे लागल बिहार से उठल ड्रीम इतना फील लिरिक्स में गीत लागे लागल हम पॉप कनी लाइफ नेचर बीट लागे लागल प्योर रिच फिलोसफी शरीर से निकले रोशनी संकेतवा नीक लागे लागल मिला पर्सनल संकेतवा बकचोद संकेतवा के खराब बा दिमाग छोट बा सोच शॉर्ट लिस्ट कर अल्कोहल गरजवा में बचे बीट लागे लागल इतना रियल थॉट पूरा नीट मार रहे पागल कौनो बर्फ के जरूरत नहीं है गौना शादी बियाह कैसे के हमरा झेल ली कोई झेलस छः महीना कोई पुरौलस साल हमारे रिटेशन से बर्बाद हो गई लोकर जिंदगी में दाग माई बाप के एहसान की झेलन 25 साल एक क्राफ्ट लौड़ा माचुदा है तुर बीट बेस सब भाड़ में जाए हार्ट बीट बचे तेज कहरवा ताल हो गई धुआं धुआं पूरा गली मोहल्ला उदासी महसूस कर तू हवा में अपन माई बाप के साथ चलब का सीख के करब गला से का चीख के करब गला से तो हम सब जाना के माई के चौदोपुर में जाए भोजपुरी रैप हम तोर सोल्जर नहीं की केकरो भाई नहीं केकरो रख अपन सब पैसा पुर में हम चढ़ के देव गाड़ी मुँह पे रियल रियल छिकला सीन रियल हो गई तब तीख लागे लागल इस सब कट्टा तोहर छोड़ सीधा तीर मार रहे पागल नशा जिंदगी दिमाग मातल सजा ठीक लागे लागल कल छोड़ दे ले रही गांजा छोड़ दे ले रही म्यूजिक आज फिर बीट बाजे लागल चार गो लेकर इंस्टा पे हमार लिरिक्स ताके लसन आत्मा के बा पोर्टल हमार फीलिंग जाके लसन गजल गीत लागे लागल सब कुछ नीक लागे लागल इतना रियल बात लेकर डेराइल बड़न बातचीत से आहा इतना रियल बात की लेकर डेराइल बड़न बातचीत से बिना होके माइक खींची चिलम ऊपर चांद लिखे ड्रामा देनी साउंड अंडरग्राउंड रिच लागे लागल पांच तीन से इतना रियल बात लेकर डेराइल बड़न बातचीत से

0: रहने दे भाई, हमेशा कैंसिल होते हैं तेरे प्लान।
1: भाई बहुत चीजें होती है लाइफ में, तुम्हारी तरह भाई फ्लैट पे नहीं रहता हूँ मैं, घर पे रहता हूँ, बहुत चीजें देख के चलनी पड़ती है। और नहीं है भाई मेरे पास पैसे, अभी नहीं है रिसोर्सेज मेरे पास अभी घूमने के लिए।

0: सुसाइडल तस्करे माता बड़ी हाथ लगा नशा मेरे बेटा तोड़ी कली मैंने बॉन्गेट चार मारे मेटाफरी कली बजा रात तेरी टाइम जगह पौने चार हुई मॉर्निंग स्टार्ट कभी वक्त पे नहीं गया कोसम फॉलिंग हार्ट तेरा चल चल सही मगर चल चली गलत तूने ब्रांड तेरी नजर मेरा ऑल इन प्यार
1: बस अब नहीं सुनना और
0: गिर चुका हूं।